खानानै सालो सुनामराव हायनाय अबनि बागिनो बांग्ला फायखांके बाहायखेजों बानसिमानाय आबुनति बहायनो अरो मगदिल खायजेखनाय आबुंका सुनामरा महाकुमानि बिखाखदै आरो कन्फारेन्स हलो अजागो टेबिल टेप एक्सारसाइज दै बाहायखे नों बांग्ला फायग्रु बानसिमानाय आबुनति कक सालायनाय दै कक्लाम चाबलायनाय आजागा मानजोंनाय एसडिएम राजुदेव दै आजागानि पुलिसनि बर्रक दिव्यनु दास डिसिएम प्रबे साहा चारिता ब्लकनि तिनाय अरो कक सालायनाय आबुनो कारिबो गोबांमा बेरेकनि बर्रक बिएसएफ टिएसआर टिप्रा पुलिसनि बर्रक उठाङिनि मालायनाय अजा कक सालायनाय बाहागदै बाहायखे बांग्ला फायग्रु जों गाहाम गोरोंगे दङमान बबायखे बानजिनाय दाम खालायखेनखे जों गाहाम गोरों ओंनाय आबुनो नायलायनाय अमग्रिल' थाङि मानजोबनाय खानाव ओंनाय फुंनि दामजिदामै सफैथाय।

आश्चर्य शेबो को बरक तलाम मने को खना बाय क्या ताबो खना लाई ने नौ बर्ते बनी कॉग डॉग तीनी ने नौ बर्ते बनी कॉगो शाकलाई जख नौ खावो चुम्मी को पलों तोगने किसा से थायो फियरां कोगे वाते वावी मनो तुम शामरी थामचिबा डिग्री सेल्सियस तुम खलाई मरी नैचिदोग डिग्री सेल्सियस नौ खावो शिबोग मारी रावो चुकुचिचा ते खामाओ नुकजखा रावो बाचिचा वाते फैमनी मारी रो नुकजग लिया फियाबा हास्ते नी गरंग गरंग थायो फेरां कोगे वाते वाईमने नहने हजाक नुंग छाकलाई जखा अशक जरा खनाबाई क्या नौग बढ़ते बानी को ताबो खनाबाई न रचा मुंग खरांग रवन राहेल कोलोई

0: समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।

0: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।

कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक

0: भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। यह खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार प्रभात শ্রোতা বন্ধুরা, আপনারা অনুষ্ঠান শুনতে পাচ্ছেন 103.7 মেগাহার্জ এফএম প্রচার তরঙ্গে আকাশবাণী বিলোনিয়া কেন্দ্র থেকে। এখন শুনুন আজকের কবিতা। বলবেন পার্বণী সাহারায়, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় আগরতলার অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী।
3: নমস্কার। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা সর্বহারা। ব্যথার সাতার পানি ঘেরা চোরা বালির চর, ওরে পাগল কে বেঁধেছিস সেই চরে তোর ঘর? শূন্যে তড়িত দেয় ইশারা, হাট তুলে দে সর্বহারা, মেঘ জননীর অশ্রুধারা ঝরছে মাথার পর, দাঁড়িয়ে দূরে ডাকছে মাটি দুলির তরুকর, কন্যারা তোর বন্যা ধারায় কাঁদছে উতরল, ডাক দিয়েছে তাদের আজি সাগর মায়ের কোল, নায়ের মাঝি নায়ের মাঝি পাল তুলে তুই দেরে আজি, তুরঙ্গ তুফান তাজি তরঙ্গে খায় দোল, নায়ের মাঝি আর কেন ভাই মায়ার নোঙর তোল, ভাঙন ভরা আঙনে তোর যায় রে বেলা যায়, মাঝি রে দেখ কুরঙ্গে তোর কুলের পানে চায়, যায় চলে ওই সাথের সাথে ঘনায় গহন সাঙন রাতি, মাদুর ভরা কাঁদন পাতি ঘুমোস নে আর হায়, ওই কাঁদনের বাঁধন ছেড়া এতই কিরে দেয়, হীরা মানিক চাশনি কতই চাশনি তো সাত ক্রোর, একটি ক্ষুদ্র মৃত পাত্র ভরা অভাব তোর, চাইলে রে ঘুম শ্রান্তি হরা একটি ছিন্ন মাদুর ভরা, একটি প্রদীপ আলো করা একটু কুটির দোর, আসলো মৃত্যু আসলো জরা আসলো শিদিল চোর, মাঝিরে তোর নাও ভাঙিয়ে মাটির বুকে চল, শক্ত মাটির ঘায়ে হোক রক্ত পদতল, প্রলয় পথিক চলবি ফিরি দলবি পাহাড় কানন গিরি, হাঁকছে ভাদল ঘিড়ি ঘিড়ি নাচছে সিন্ধু জল, চল রে জলের যাত্রে এবার মাটির বুকে চল। নমস্কার।
2: শুনলেন আজকের কবিতা। বলল আগরতলা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী পার্বণী সাহারায়। শ্রোতা বন্ধুরা, অনুষ্ঠানে এবার শুনুন নজরুল গীতি দোলনচাপ অনুষ্ঠানে আজকের শিল্পী নাসিমা শাহিন।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओम मिन आउनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में

0: आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। ये बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता है। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: এতক্ষণ শুনলেন দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ। শ্রোতবন্ধু, আপনার এই অনুষ্ঠান শুনতে পাচ্ছেন 103.7 মেগাহার্জ FM প্রচার তরঙ্গে আকাশবাণী বিলোনিয়া কেন্দ্র থেকে। এখন শুনুন হিন্দি চাচাওয়ের গানের অনুষ্ঠান গানে গানে। অনুষ্ঠানে আজকের প্রথম গানটি শোনাচ্ছি সাজন ছবি থেকে, শিল্পী অনুরাধা পরওয়াল।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोक भवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था और इस विस्तार के साथ ही राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार तथा तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: এতক্ষণ শুনলেন দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ। স্বতন্ত্র আপনার অনুষ্ঠান শুনতে পাচ্ছেন 103.7 মেগাহার্জে এফএম প্রচার তরঙ্গে আকাশবাণী বিলোনিয়া কেন্দ্র থেকে। এখন শুনুন দেশাত্মবোধক গান দেশবন্ধন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে।

0: में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित हो रहा है। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में

मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री लामिछाने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनका नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सहित कई उच्च स्तरीय राजनीतिक और राजनयिक बैठकों में शामिल होने का कार्यक्रम है। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजे गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

kamang takuk tay bakuk song lam sago tini ni radio quiz khnai tongnai kamang takuk tay bakuk song no lam sago tini radio quiz ang tongo norok ni takuk kishur radio quiz jo norok jese guttor imanai asang no norok bagine kamang nai phia chung norok no asumung chungnai tini ni puila sumung radio quiz jo ang tongo tini norok ni takuk kishur आर जे किशोर एफएम उज्जैन तो सारसा पेंदो खे के 101.6 मेगाहर्ट्ज रेडियो क्विज पांदानो ते तिने रेडियो क्विज पांदो पुइला सुमंग नरकनि बागै जेने जे स्टुडियो नि मंग सिनि एफएम स्टुडियो नि सिनि जे एफएम नि मंग एफएम उज्जैन तो जे राजप्रसाद नि हायखबा नुइमानि मंगने अम मंग नारक जाखा अबसिनि बुबागरा बसंनि सनाम जा बबाकरण तंगथाइनक राजबाडीनि मुं उज्जैन तो तमक सुमुंग नरंगनि बागै सुमुंगंखा उत्तर सायमाके चिमि कॉल खालाय दि फाटफाटके उत्तर सायमाया वइ तमक क्वेश्चन हनै नेता संदि जेसे उत्तर इमानै आसं बागै नरंग बागै काहा मुनाय आं नरंगनि बागै नै आं उत्तर सेस नरक न साया कुनर बायके कॉल खालाय तंगा आबो कैसे बेलाय वानामा सिंसा बिया उत्तर सायमानि न कॉल खालाय दि आं नरं बागै कयो उत्तर प्रश्न सायमानि ने कॉल खालाय दि प्रश्न अंखा उज्जैन तो मुं हाय का उज्जैन तो प्लेस बो बबगरान आमालो सनाम जाक दिनै पुलिया कॉलर हेलो हेलो ककरे छाबो तमनि कादंगि थांका उज्जैन तो प्लेस बुबाग्राते बु विश्व सुनाम हेलो हेलो कादंगि थांपिका ककरे तेवसा कॉल खालायपिदि 2326253 ककदों नंबर दिनैनि रेडियो क्विज नि पुइला सोंमुं उज्जैन तो प्लेस हायखाबो उज्जैन तो प्रासाद बु बबगरा सोनाम हेलो तामनि बागै दं कॉल न यासग मायाङै दंखा सिया फियाबा कॉल तो फाइन दङ हेलो

0: ताखु ब्रिजेस काइथमनी उत्तर उइने जतनि कुजु गतंग ताबुनि सुमु नरनि बागिने किसा जुदा किसा फेम लगमु खाखलय नरक जतन आबुनि उत्तर उइमानाने काम के खनाय नारक दे खिरिंग पुंगनायसा याकुंग या थामसा यासा हिमके यागने हिमो आबो तामसला खिरिंग पुंगनायसा याकुंग या थामसा यासा हिमके यागने हिमो आबो तामसला दने फाट फाट के करंग दे 232-6253 कॉकडुंग नंबर हेलो
1: ओबोंके यांगला
0: यांगला तुरुक तुरुक के साथी किसा मोबाइल बाय किसा हासल के साथी
1: आय को मोबाइल हासल लो ना ओमन के चिपम दते से हासके साइड फार कर दरा
0: खिरिं पुंगनाइसा याकुंग या थामसा यासा हिम के यागनि हिमो आबो तामसला
1: आ ओमन के जोंगल
0: जोंगला नि याकुंग या थामदा काइ थामदा
1: सॉरी सॉरी ओमन
0: वन टू डी 232-6253 कॉकडुंग नंबर मोबाइल यूजर 0381 कुन नंबर नान ताफुक दे खिरिं पुंगनाइसा याकुंग या थामसा यासा हिमके यागने हिमो आबो तामसला हेलो दिबर कहाम साबुंका उदयपुर महारानी ताखु राजु सारि उत्तर तामो
2: रिक्सा दं खा सार
0: उत्तर सटिक के सारि
2: रिक्सा रिक्सा जानो मान द बस ओ आंके बोइ
0: नंग आबो कन्फर्म के सारि लकिया जाय रिक्सा चालु मानि तामबो मो ताखु हे तामबो बोमु
2: राजु कुमारिया
0: राजू कुमार यांग बुरो नहीं सिमी
2: उदयपुर महारानी ने
0: उदयपुर महारानी ने राजू कुमार यांग तामा भाई खाना चाकर है चीनी पांडा रेडियो तो दिया खाना ना मोबाइल भाई
2: मोबाइल भाई
0: मोबाइल भाई खाना हो ना चीनी पांडा किंतु ऑन लाइव खाने मानो गुगल थाने टाइप खले एफएम उज्जैन तो लाइव रेडियो होने ने खलाई दी एफएम उज्जैन तो टाइप खले कंके ना लाइव लाइव खनाई मनो बेले हम भाई ताकुर राजू कुमार रियांग नो खिरिंग पुंगनाइशा या साहिम के या गने हिमो अबता मसला रिक्शा बेले हम भाई राजू बेले हम भाई ताऊक सुक जोरा ताऊक सुक जोरा ताऊक सुक जोरा खरक बुरी उत्तर रिमखा जे जे सुमुंगनी अबने बिचिंगनी ने ताकु ब्रिजेस কাইথামনি কাইথাম উত্তর উইনে যতনি টপ তঙ্গ তাকু ডেভিড কলই কাইসা উত্তর রিমাকা বুখ কনিকা কাইসা রাজু কুমারিয়াং কাইসা রিমাকা ফিল্ম নি জগত কিসা থাংলাই নে তামহন খাবং তাকু দে বুখ সং সং যতন চাই মান হিন্দি তকে শুলে হিন্দি তকে শুলে নি सुले जतन छाई मानो हिंदी तके सुले वो अमिताभ बच्चन नी मोंग का जॉय हाके आज अगर अमिताभ बच्चन नी लगी जे तके मसाने धर्मेंद्र नी बीनी मोंग तामो हेलो
3: कोनिका साई दोंगो
0: बुखो कोनिका ए सादी बीरो वाई बस नहीं का सागर दी
3: नहीं क्या
0: नहीं बीरो बीरो बेले हम भाई बेले हम भाई ताऊ से जरा जेसमुंगो सेकंड पोजीशन न तंगो बुखो कोनिका फर्स्ट पोजीशन न तंगो ताकु ब्रिजेस सेकंड पोजीशन न तंगो बुखो कोनिका তে আপুনি যা গলো তঙ ডেভিড কলৈ কাইছা ৰাজু কুমাৰিয়াং কাইছা খামাক তাকো তাই বুকুক চাওঁ নৰ খনাই তঙ এফ এম উজ্জেন্ত চাৰা চাপেন্দ এক 101.6 মেগাহাৰ্টজ তিনি ৰেডিঅ' কুইজ

रोगनि बागै त्रिपुरा जरा कायसाबो बुबागारा रग बाय नायकलचाक हाक्तर तंगमानि आबुनि यागुलो हायुंनि तमुं चामुं नायनाय गानागिनिनि हाक्तर रोगनि चप्रमुंनि याकाकना बागैनाय भारत बाय गदालो बा भारत बाय माजारे एग्रीमेंट खालायो त्रिपुरा बो बिसिबो भारत बाय भारत हा कतर बाय मार्जार एग्रीमेंट खालाय

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: लाम सगो साम का ताको
1: आं कृष्ण देवरुमा
0: बोरन ची मी कॉल खालाय तो
1: यां काइंड ऑफ कोपरानी
0: कांटा को परानी सादी ताको वी के नेहरू ने बने शोई मुंगतामो
1: ब्रेस कुमार नेहरू
0: ब्रेस कुमार नेहरू तोंगे लोगी तोंगी नहीं करना ती सब तो ते सब तो दरी फाट फाके करंग दे 2 3 2 6 2 5 3

0: 232-6253। बी के नेहरू ने छय मौ त्रिपुरा ने पुला हस्तेपा ने मौ बी के नेहरू
1: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन

0: हेलो
1: राजीव और कहाँ
0: जीव कहाँ ताको ब्रिजेस नो
1: करतला निंतु दलाई दलचन खुलम का इसो
0: आय
1: पान रोमा के पैसा खालो को तो पच लाइक ना हम बाय ना रोवा तुम तो ठोका तुम्हें कोई छान रखना
0: बेलाय हम बाय
1: इतने खाना ना इंचा आंके सब मुंको बरों ना खाना ना मुझे तो खाता रहा
0: ए सादी
1: अब खंडर पे तो है बो मत तो मुझे तो खाबा मुझे रखा लेना समझ बा वो को ama dışına deri sabca kunduru boy mosite darden ay humanita. Abonan special deri zat kanay. Nora no no number one, number two inkane duhana ama sorna maya. Ya şimdi şimdi da kaka hamba ya kiti. Ya şimdi nananı da ki. Razdanı yongana da ki. Bay bata. Anlayın şimdi nana sayetti. 신은 다 비시라이 다 비지서라 다 클란타서라 이서만의 양원들이 서 잡다니 바게냐
0: 잡던 바게
1: 잡던 바게 따라 엄마의
0: column다 다

0: हेलो
1: हेलो विशाल।
0: हेलो
1: खरा खनाऊ दाय
0: ए खनाओ सारी
1: या उदयपुर का महारानी ने दाजु तो
0: महारानी ने ताखुरा जे बोर साम खना नाइ सारी
1: हिंदी हिंदी तो कोई नहीं खना दाय अब आप मुझे अच्छे लगने लगे हिंदी तो मन आप मुझे अच्छे लगने लगे हिंदी वो तो कोई नहीं मुंबई बो जिस तमने कोकते बुबो
0: सामने खना नाइ
1: 그냥 기차들이게 괜히 샤프이나 너너 이게 김랑이 바이바치노 사카절란 바이코니카 본케노 포이시 안산의 바그이 넘버 1 시통 하시 데리시보 안산 말게 본이 포레 다비시라이 좀 피자나니 이게 다로빈드로 시톤드로니 제테이 치티 티니 타웅데
0: দাকন বেলা হাম্বাই।

0: बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जोड़ा ताई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे।
1: हेलो खबंग ताकू तब खुचों नरक खुनाय तुम नरक ने हमजक मा सिनि खातों मा पंदा कक दुख बाय करंग दे ते नरक ने खना तक जक मा रसा मुंग न खना ना बागे ने ददि फार फाके 2326253 कक दुख नंबर अफ करंग दे। हेलो
2: हेलो दादा हम पेगर तलांग दुरी कल तो
1: ए सादी ताकू ओ क
2: सिनि मना सिरते दलाय चन कॉल खाबरी माले अबो जोर जामा मारन तो छो
1: नों दो जेफ्र कक सब किसा मोबाइल नि थे किसा हासल के सागां के क्लियर के खनाओ गे गाना के सागां के प्रे प्रे के खना पायो
2: दादा
1: दा दा के खना दे।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ लामसको खुलमका
1: हसिङ बाकुक देनी फनखला नि
0: ए
1: गान खाना ना हमारे नरगा बहुत बुझले मारे लिया था
0: आम बोनो सुन काम ले
1: तबे जे नंग जे गान खाना रे माने अब का नि छंग दते खबरि जान हो तो दिल ए प्रभु बहुत जे खाना ना हमारा आंग बोनो खाना रे रेसे नै
0: ए दा दा दा सादिन के
1: बोने बुम को छाने देवल नि बोइता दर
0: आ हे
1: तारो रुपम ने लता मंगेशकर भाई हरिहरन साउथ नि गायिका अब गायक अब
0: ए
1: लिखा है ए इन हवा उस ए भाई जा
0: आदर फिल्म संग ने
1: दर दर
0: आदर
1: ये चावल आर दर तो फानी चावल भाई जुरी चावल आता
0: कक्ता इंकां के
1: हम से लिखा है ये इन हवा उस ए भाई जा
0: लिखा
1: है ये इन हवा उस ए भाई अगर सामने के लता मंगेशकर भाई हरिहर
0: রসামুং ন খা খরচে খরচে তো খা তো জমা দাম গে খাদি তা